ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, सक संवत 1948, श्रावण माह की तृतीय तिथि, तदनुसार 25 जुलाई 2026। श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: श्रोताओं, हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को

0: उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारी राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का कथन है, क्रोध में 1000 शब्द बोलने से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। ये था आज का चिंतन। लीजिए वंदनवार में आपको सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं।

यह है विविध भारती झरोका में। लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 260, 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन। इस कार्यक्रम का 5वां भाग आज आप सुनेंगे, समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी सुनिएगा। चित्रलोक सुबह 8:30 और रात 8:15 से। नौ 9:30 से आज के फनकार केंद्रित होगा संगीतकार जीएस कोहली पर। आलेख वस्वर यूनुस खान। दस 10 पिटारा में सुनिएगा गीतों भरी कहानी, जिंदगी की यही रीत है। लेखिका रिद्धि चौरडिया। वाचन संपादन नेहा शर्मा।

11 बजे से चित्रपट संगीत। ग्यारह बजकर 30 मिनट से मैटिनी शो, जल है तो कल है। पर्यावरण विशेषज्ञ शुभजीत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। आज होगा इसका दूसरा भाग। एक बजे से सुरीला सफर, 2 बजकर 30 मिनट से सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे से लेकर आएंगे मन चाहे गीत। दिन में 3 बजकर 30 मिनट से नाट्य तरंग में नाटक वो मंजिल कहाँ, लेखक डॉक्टर रणवीर सक्सेना, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। चार बजे से पिटारा में सुनिए बॉम्बे टाकीज। फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। पांच बजकर 30 मिनट से तराने नए पुराने, 6 बजकर 35 मिनट से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से विशेष जयमाला पार्श्व गायक अनूप जलोटा द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। 7 बजकर 45 मिनट से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल में सुनिएगा सुनो कहानी, पीसनहारी का कुआं। इस कहानी का पहला भाग आज आप सुनेंगे। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचन अमरकांत दुबे। 9 बजे से आप

आपके लिए लेकर आएंगे। 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति जिसके अभाव में जात पात, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है, वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं, तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

0: आपने अभी सुना श्री रामचरितमानस का भाग 260।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: घुंघरू की तरह। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, एक पंक्ति मुझे याद आती है, एक पंक्ति मतलब कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। कोश में यूं तो हजारों शब्द हैं, कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का सम्यक प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है।
2: वाह,
1: शेक्सपियर ने भी कहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इज पोएट्री। प्यारे दोस्तों, रविंद्र जैन साहब का गायन पक्ष और संगीत निर्देशन का पक्ष जितना सशक्त है, उतना ही सशक्त है उनका लेखन। दादा एक बहुत अच्छे दर्जे के साहित्यिक प्रतिभाशाली कवि और गीतकार हैं। इनकी प्रतिभा में कई बातें जुड़ गई हैं। चूंकि दादा लिख नहीं पाते हैं, दृष्टि मंद है, फिर भी ईश्वर ने इनको इतनी संपदाओं और प्रतिभाओं से नवाजा है कि ये स्पॉन्टेनियस वहीं के वहीं तुरंत वातावरण और माहौल को महसूस करके कविता कह देते हैं। ऐसे कवि बहुत कम होते हैं और मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि आज की श्रेणी के कवियों में रविंद्र जैन साहब कवि के रूप में बहुत ऊंचे हैं। आपके लेखन के बारे में, आपके अनुभव के साथ कुछ जानना चाहते हैं।
2: मुझे साहित्यिक मेरी अभिरुचि बहुत, जैसे मैंने आपसे बताया, प्रारंभ से ही है।
1: जी,
2: लिख कितना पाया हूँ वो तो नहीं कह सकता, लेकिन सुना बहुत अच्छा अच्छा है। हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे ऐसे कवि हैं, ऐसे लोगों ने रचनाएं की हैं कि बस आदमी पढ़ता रहे। मैं ये मानता हूँ उम्र बहुत कम है ऐसी कलाओं को, ललित कलाओं के लिए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लें, सुन लें, वही हमारी उपलब्धि है। मैं थोड़ा बहुत जो कहता हूँ वो, जैसे कि आपसे बताया, अलीगढ़, एक तो उसकी उसमें फाउंडेशन में अलीगढ़ मौजूद है, फिर कलकत्ते गया, टैगोर का उनको पढ़ा सुना बहुत,
1: साहित्य पढ़ा टैगोर
2: जी
1: का।
2: बहुत अच्छे अच्छे वो तो क्या कहें, लाजवाब लोग हैं। आज आप कविता के किसी मोड़ पे खड़े हो जाइए, गुरुदेव आपको वहाँ मिलेंगे।
1: शिलालेख हैं वो लोग,
2: शिलालेख
1: बिल्कुल।
2: फिर वहाँ के कंपोजर काजी नजरुल इस्लाम और डीएल राय, बड़े बड़े बड़े विशेष लोग,
1: कमाल के लोग हैं ये।
2: जी जी, तो उन वहाँ से मैं मुझे जो गढ़ा गया है, उन सब चीज़ों ने गढ़ा है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज हम जो कुछ कहें, कम से कम ऐसा कहें कि उन लोगों को शर्मिंदगी ना हो। उनसे अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको शर्मसार ना होना पड़े। हमारे
1: कितनी अच्छी बात कही आपने। हम चाहते हैं कि आपकी सृजन की हुई कुछ रचनाएं हम अपने श्रोताओं को सुनाएं और आपके काव्यात्मक हुनर का भी दर्शन करें।
2: फिल्म में तो आपने महसूस किया कि मैंने हमेशा उन गीतों की ऊंचाई देना चाहिए है, ऐसे लफ्ज लाया हूँ, संकेत है और इस तरह के, जल जो जल न होता तो ये जग जाता जल,
1: जी
2: है ना, अलंकारों का भी प्रयोग है, सजना है मुझे सजना के लिए।
1: और बल्कि मैं यह यूँ कहूँगा कि आपने फिल्म और साहित्य को बहुत नज़दीक लाने की कोशिश की है, जिसमें आप सफल हुए हैं। तो कुछ अपनी रचनाएं आप दादा।
2: मैं आपको सुनाता हूँ, एक पीछे एक मेरी किताब शाया हुई थी गज़लों की,
1: जी,
2: उजालों का सिलसिला, उसमें से एक गज़ल के दो तीन शेर आपको सुना रहा हूँ।
1: इरशाद।
2: उफ ये सफ़र तवील, ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफ़र तवील, ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफ़र तवील, ये छालों का सिलसिला, उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला।
1: क्या बात है, वाह वाह, उस पर
2: मिजाज पूछने वालों का सिलसिला। हम ही ना अपनी कैद से बाहर निकल सके,
1: क्या बात है,
2: वरना कहाँ नहीं है उजालों का सिलसिला।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
2: वरना कहाँ नहीं है
1: उजालों का सिलसिला।
2: इंसान को सारी उम्र फिर आता है दर बदर, दो रोटियों का चारने वालों का सिलसिला।
1: क्या कहने, इसमें तो आपने पूरा दर्शन डाल के रख दिया दादा। वाह,
2: तो इसमें बहुत सारी गजलें हैं, नज़में हैं।
1: कुछ और इरशाद करें।
2: एक हिंदी की कुछ रचनाओं का संकलन
1: स्वागत है
2: अभी निकालना चाह रहा हूँ, उसमें से एक गीत आपको सुना रहा हूँ। और उस गीत की विशेषता यह है कि वो गीत मैंने, मेरी जीवन संगिनी दिव्या जो है वो इसी गीत से प्रभावित होकर जीवन में आई। सौदागर की रिलीज पे मुझे मिली थी, लेकिन उसके मुझे मेरा साहित्यिक पक्ष उसको बहुत पसंद था।

0: दादा, आपके इतने सुंदर गायन और इतनी सुंदर शब्द रचना से ऐसा लगता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर कहीं ना कहीं है जिसने आप जैसा प्रतिभा संपन्न कलाकार इस धरती पर उतारा। अच्छा, आपके लेखन के सफर में आगे चल रहे हैं तो आपने बहुत सी सांकेतिक भाषाएं और तुलनात्मक भाषाएं और अलंकार बहुत इस्तेमाल किए अपने गीतों में, जिससे संगीत का यानी फिल्मी संगीत का स्तर बहुत ऊंचा जा पहुंचा है। कुछ ऐसे गीतों के बारे में जानकारी दें जिसमें आपने कई उपमाएं और कई अलंकार इस्तेमाल किए हैं और कॉमर्शियली भी वो गाने बहुत हिट हुए हैं।
1: सबसे पहले वो सौदागर में आशा जी का गाया हुआ गीत सजना है मुझे सजना के लिए।
0: वाह वाह वाह, क्या उपमा है।
1: एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ। भूषण जो वीररस के कवि हैं आपने उनको जरूर सुना पड़ा होगा।
0: जी जी।
1: ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं।
0: वाह वाह।
1: तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी सो नगन जड़ाती हैं। तो इसी तरह का प्रयोग इस गीत में है।

0: आशा जी बहुत वर्स्ट स्टाइल आर्टिस्ट हैं, हर तरह के गीत की गाने की आशा उनसे की जा सकती है। इसी तरह वो गीत गाता चल में ये है ना अपना उसका टाइटल सॉन्ग,
1: गीत गाता
0: जल
1: चलता।
0: जो ना होता तो ये जग जाता जल।
1: वाह वाह वाह,
0: एक शब्द के दो अर्थ
1: निकलते हैं।
2: चांदी

0: जब कोई गीतकार संगीतकार बनता है और जब कोई संगीतकार गीतकार बनता है तो वह रविंद्र जैन बन जाता है। दादा, आपके गीतों में, गीतों की पंक्तियों में शब्दों का इतना अच्छा फैलाव है, इतने अच्छे अर्थ हैं, गेयता के साथ साथ उनमें आध्यात्म भी स्वयं चला आता है जो आपके एक नहीं अनेक गीतों से जाहिर होता है। संगीत सरिता के प्यारे श्रोताओं, आज की इस कड़ी का सफर यहाँ समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में रविंद्र जैन साहब के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे।
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूप

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

0: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर आते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड, इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। योगेश ने इसे लिखा, जीएस कोहली का संगीत। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का,

पैगाम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में, हसन कमल ने इसे लिखा था। आज संगीतकार जीएस कोहली की पुण्यतिथि है। आज भूले बिसरे गीत में हमने आपको सुनवाए जीएस कोहली द्वारा संगीतबद्ध गीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: भाभी की चूड़ियां, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मुकेश की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा और सुधीर फड़के का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम भूले बिसरे गीत यहीं संपन्न होता है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म

0: आपसे कुछ ही देर में सुनेंगे कार्यक्रम हमारा ही प्यार के।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आप पहुंचे।
1: फिल्म काला पानी से गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।

फिल्म लूट मार से अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

इंसाफ का तराजू इस फिल्म से। अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
6: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
9: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुझाव।
6: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्य

0: कार्यालय शामिल हैं। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसीव्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows,
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य

0: से सवार थे, अन्य दो भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। दो दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 115,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती।

दोस्तों, आजकल दुनिया से भोलापन यानी मासूमियत जैसे गायब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक और बड़े व्यवहार कुशल लोग अपने भोलेपन का स्वांग जरूर रच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही ओढ़ी हुई मासूमियत गायब हो जाती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि उम्र के हर पड़ाव में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा भोलापन बचा कर रखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो मासूम है वो ही किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो भोले हैं वही किसी की भलाई कर सकते हैं।

तो दोस्तों बात चल रही थी मासूमियत की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मासूमियत गुम होने लगती है, लेकिन जो लोग छल प्रपंच से अपने को दूर रख पाते हैं, जो लोग दूसरों से कम नफरत करते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में

अपने आप को खुश रख लेते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई नहीं ढूंढते, जो लोग मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला बर्ताव नहीं करते, वो लोग लंबे समय तक अपनी मासूमियत बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है दोस्तों कि कितने भी हो जाइए समझदार, कितने भी हो जाइए चतुर और व्यवहार कुशल, लेकिन मन के किसी कोने में बचाए रखिए अपनी मासूमियत।

दोस्तों, बच्चों में एक किस्म का भोलापन होता है और इसे उम्र भर कायम रखना चाहिए, लेकिन आज ये भोलापन बच्चों में भी जैसे समाप्त हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने सयाने, इतने व्यवहार कुशल और तेज हो गए हैं कि उतने किसी जमाने में नहीं थे। आजकल के बच्चे कम, सयाने ज्यादा लगते।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
3: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
2: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131, 132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये फिल्म का नाम था। शेखर रावजियानी, सलीम मर्चेंट, नीति मोहन और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विशाल शेखर का संगीत, अन्विता दत्त ने इसे लिखा।

0: शाहिद माल्या को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था उड़ता पंजाब। अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए,
0: आप सुन रहे विविध भारती से इस वक्त प्रोग्राम चित्रलोक। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
7: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
8: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
7: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा

0: योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जावेद अली और बन ज्योत्सना की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दे दनादन फिल्म का नाम था, आशीष पंडित ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत था। दोस्तों आपको बता दें कि आज है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी विश्व डूबने से बचाव दिवस। सन 2021 के दिन इसे मनाने की शुरुआत हुई थी और इस दिन का मुख्य उद्देश्य पानी में डूबने की घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जीवन बचाने के उपाय बताना है। और हमें खासकर छोटे बच्चों को, 5 साल से 14 साल के बच्चों को डूबने के खतरों के बारे में बताना चाहिए और उन्हें इससे बचाव के तरीके भी सिखाने चाहिए। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रातः के 9 बजने को हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राज्य में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में आज अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों के सर्वे का कल अंतिम दिन। प्रदेश में पिछले ढाई वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के ओटीएस में भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित समारोह में इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक मौजूद रहेंगे। भारत टैक्सी सेवा देश की पहली सहकारिता आधारित डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सेवा है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से संचालित किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश शासन सचिवालय में बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्य सचिव ने वर्ष 2024-25 और 25-26 की लंबित घोषणाओं के कार्य में तेजी लाने और वर्ष 2026-27 की घोषणाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने को कहा। उन्होंने भूमि आवंटन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने, अगले 3 महीने में सभी बजट घोषणाओं के वर्क ऑर्डर जारी करने और 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बजट घोषणाओं की प्रगति नियमित रूप से CMIS पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने OBC परिवारों के सर्वे की अवधि कल तक बढ़ा दी है। आयोग के सलाहकार अशोक कुमार जैन ने बताया कि कई जिलों में सर्वे का काम अभी बाकी है। इसे देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को कल तक सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद सर्वे की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आयोग को अपनी अनुशंसा रिपोर्ट निर्धारित समय पर राज्य सरकार को सौंपनी है। राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जा रहे इस सर्वे के आंकड़ों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित अनुशंसाएं तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। नेशनल परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी और कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यह परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये अपने पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान

0: राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि गिव अप अभियान के माध्यम से रिक्त हुए स्थानों पर पात्र परिवारों को जोड़ा गया है ताकि कोई भी जरूरतमंद खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे।
1: सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने का जो अभियान चलाया गया था उसी से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में भी हमें इस तरह का अभियान चलाना चाहिए और वो अभियान हमने शुरू किया 1 नवंबर 2024 को। और मुझे बताते बड़ी प्रसन्नता है कि उस अभियान के तहत आज दिनांक तक 93 लाख लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से बाहर हुए, 67 लाख लोगों द्वारा गिवअप किया गया और 27 लाख लोगों द्वारा गिवअप अभियान के तहत ही जो उसमें था कि EKYC अंगूठा लगाना जरूरी है, तो बहुत से लोगों द्वारा कि उन्हें पता था कि हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, EKYC नहीं करेंगे तो अपने से बाहर हो रहे हैं, वो इस तरह 27 लाख लोग वैसे तो कुल मिला के 93 लाख लोगों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप किया गया।
0: राज्य पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तीसरे सप्ताह में 41,923 महिला श्रमिकों और 7,834 बुजुर्ग महिलाओं से सीधा संवाद किया गया है। पुलिस टीमों ने कच्ची बस्तियों, कारखानों, निर्माण स्थलों, ईंट भट्टों और प्रवासी बस्तियों में पहुंचकर महिलाओं को सुरक्षा, उनके अधिकार और साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी। अकेले रह रही बुजुर्ग महिलाओं और दंपतियों के घर जाकर उनकी समस्याएं भी सुनी गई। राज्य पुलिस ने आपात स्थिति में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 पर संपर्क करने की अपील की है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि जिन अस्पतालों में प्रसव होते हैं वहां के स्त्री रोग विशेषज्ञों को मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए अगले 5 दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में सभी 108 एम्बुलेंस में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के प्रबंधन के लिए एंटी शॉक NASG गारमेंट उपलब्ध कराने और पैरामेडिकल कर्मियों को इसका प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निदेशालय स्तर पर कैंसर सेल गठित करने, कैंसर स्क्रीनिंग वैन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन के मानसून सक्रिय रहने और कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश जबकि कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से प्रभाव से ये स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर सहित करीब 20 शहरों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई। माउंट आबू में सबसे अधिक 195 मिलीमीटर और पाली में करीब 4 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई। बीकानेर जिले के लूणकरणसर में कंवरसेन नहर का चैनल टूटने से करीब 300 बीघा में खड़ी मूंगफली और कपास की फसल प्रभावित हुई है। बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कारगिल विजय की 27वीं वर्षगांठ पर राज्य सैनिक बोर्ड आज जयपुर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजन का सम्मान करेगा। ये समारोह बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में सप्तशक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा मुख्य अतिथि होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में आज भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे का कल अंतिम दिन। प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है, FM बैंड 14.3 MHz पर। श्रोताओं अब आप सुनेंगे FM रेडियो पिंक सिटी के कार्यक्रम।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। दिस इज रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। तन में है आपके साथ ऑन दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लिसफुल मॉर्निंग। आज है 25 जुलाई और इस 25 जुलाई की खूबसूरत सुबह को लेकर मैं तन में आपके साथ हूँ। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: तो खाद है, कुछ तो बात है।
1: गुड मॉर्निंग माई वंडरफुल पीपल। 9 बजकर हो चुके हैं 12 मिनट ऑन द क्लॉक और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट तन्मय। दोस्तों उम्मीद है कि आपकी सुबह की जो चाय है या कॉफ़ी है वो एकदम परफेक्ट बनी है। दोस्तों आज जिस सुबह ड्राइव करते हुए मैं सोच रहा था कि लाइफ में अक्सर हम हेल्पिंग आउट और ओवर इंटरफेयरिंग के बीच में जो लाइन होती है वो डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं। वी ऑफन फॉरगेट द फाइन आर्ट ऑफ नोइंग व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन टू बैक ऑफ। सोच कर देखिए, कोई दोस्त अगर परेशान है या वर्क प्लेस पर कोई कलीग स्ट्रगल कर रहा है, आर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू रश एंड फिक्स द थिंग्स। हम तुरंत सुपरमैन मोड हमारा वो ऑन हो जाता है और कई बार हमारी वो हेल्प सामने वाले के लिए सपोर्ट नहीं बल्कि प्रेशर बन जाती है। सोच के देखिएगा, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बींग सपोर्टिव एंड बींग इंट्रूसिव। यानी कि जब आप किसी के प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं बिना उनकी बाउंड्रीज को क्रॉस किए, दैट इज स्टेपिंग इन, दैट इज सपोर्ट। लेकिन जब आप किसी को उसकी लड़ाई खुद लड़ने का स्पेस देते हैं या समझते हुए उसको, हर इंसान को खुद गिरकर उठना सीखना पड़ता है, ऐसा करते हैं, एंड दैट्स माय फ्रेंड्स इज द विजडम ऑफ बैकिंग ऑफ। दोस्तों रिश्तों में भी यही रूल जो है वो अप्लाई होता है। रिलेशनशिप चाहे लाइफ पार्टनर के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, स्पेस इजंट ए साइन ऑफ डिस्टेंस, इट्स अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। हर सवाल का जवाब हमारे पास हो ये जरूरी नहीं है। समटाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन से टू समवन इज आई एम राइट हियर, मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ, ज़रूरत है तो मैं हैंडल कर लूँगा। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में आज, कहाँ आपको हाथ थामना है और कहाँ सिर्फ दूर खड़े होकर मुस्कुराना है और देखना है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स को मैनेज करता है। चलिए इसी थॉट के साथ शुरुआत करते हैं आज के म्यूजिकल सफ़र की। अ ट्रैक दैट ऑलवेज गिव यू अ पेस स्पेस ब्रीथ एंड थिंक। सुनिए खूबसूरत नगमा, स्टे ट्यून्ड विद आरजे तन्मय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: आहिस्ता आहिस्ता, जी हाँ दोस्तों, और मौसम का जो मिजाज बदला है वो नहीं है आहिस्ता आहिस्ता।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: जी हाँ दोस्तों, मौसम का मिजाज बदल चुका है और राजस्थान तो पूरे रेन मोड में स्विच हो चुका है। और अगर आप कभी कार चला रहे हो तो अपने वाइपर्स ऑन कर लीजिए, क्योंकि मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को यानी आज 25 जुलाई को पूरे राजस्थान में बारिश का ऑरेंज एंड येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जानते हैं इस वक्त क्या है टेम्परेचर इस वक्त जयपुर में। जयपुर में इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 28 डिग्री सेल्सियस, जो मैक्सिमम जा सकता है 32 डिग्री सेल्सियस तक, और मिनिमम ये टेम्परेचर करीब करीब 26 से 28 के बीच में ही रहने वाला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इस वक्त थोड़ा मॉडरेट है, जिसको हम कह सकते हैं 53 AQI मॉडरेट इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और दोस्तों, शुक्रवार का दिन यानी कि कल बीता हुआ कल तो माने तो सिरहुई, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालोर वाले जो इलाके हैं वहाँ पर मॉनसून का धमाका रहा। माउंट आबू में तो भाई साहब लगभग 8 इंच पानी बरसा है। जोधपुर की सड़कों पर घुटनों तक पानी बहने लगा, यानी जोधपुर सही मायनों में वाटर पार्क बन गया था। मौसम का ये जो रोलर कोस्टर परफॉर्मेंस है वो 27 जुलाई तक ऐसे ही जारी रहने वाला है। हालाँकि 28 जुलाई से मॉनसून थोड़ा सुस्ताने के मूड में जा सकता है, यानी बारिश थोड़ी धीमी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस बार मॉनसून ने थोड़ा नखरा दिखाया था, लेट एंट्री की थी, लंबे ब्रेक्स की वजह से हमारे राज्य के 12 ज़िलों में सूखे के हालात बन गए थे, लेकिन 5 ज़िले ही ऐसे हैं जहां एवरेज से ज़्यादा बारिश हुई। पर कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल देन एंड्स वेल। पिछले 3 से 4 दिन की झमाझम बारिश ने सीन बदल दिया है। 2 जुलाई से अब तक स्टेट के 40 से ज़्यादा ऐसे बांध जो बिल्कुल सूखे पड़े थे उनमें पानी की धांसू आवक शुरू हो गई है। दौसा का मुरेल बांध और टोंक का मानसागर बांध तो भाई ओवरफ्लो होने के कगार पर है, यानी कि फुल भर चुके हैं। चलिए एक क्विक नज़र डालते हैं कि आपकी हमारी पसंदीदा जयपुर में क्या है वेदर अपडेट। पिंक सिटी में हल्की हल्की रिमझिम बारिश से मौसम जो है वो एकदम सुहाना हो गया है। चाकसू, जोबनेर, चौमू और सांगानेर में दिन भर रुक रुक कर पानी बरसा, जिससे वो चुभने वाले जो गर्मी है वो गायब हो गई और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा था। परफेक्ट वेदर फॉर चाय एंड पकौड़ास। दोस्तों, आज अगर बाहर निकलने का प्लान है तो अपना छाता, अपना रेनकोट साथ में लेकर निकलना ना भूलिए। सड़कों पर वाटर लॉगिंग हो सकती है, तो सो ड्राइव स्लो, ड्राइव सेफ। चलिए खूबसूरत बारिश के नाम करते हैं एक और रोमांटिक और रिफ्रेशिंग ट्रैक। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। मॉनसून वाइब्स ओनली ऑन प्योर चिल रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Station with the best music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: We rock when we are together. Hey Jaipur, saath rahe, sunte rahe. Radio Pink City 100.3 FM.

0: रेडियो पिंक सिटी बनता है एक परफेक्ट पार्टनर, और हाँ अकेले हो तो अल्टीमेट मूड फ्रेशनर। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: तो बताएं आपको कुछ तो खास क्या बात है हमारे इस वक्त जयपुर शहर में। तो जयपुर शहर में जो दिन है आज का, वो राजस्थान के हर वासी के लिए सीना चौड़ा कर देने वाला, सीना चौड़ा करके घूमने वाला दिन है।
2: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: जी हाँ दोस्तों, खास बात यही है कि दुनिया की सबसे फेमस टूरिज्म मैगजीन ने अपने वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2026 की लिस्ट जारी कर दी है, और गैस कीजिए क्या, हमारी अपनी पिंक सिटी जयपुर और लेक सिटी उदयपुर दुनिया के टॉप 20 शहरों की लिस्ट में अपनी धाक जमा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आंकड़े सुनेंगे तो प्राउड फील होगा। वर्ल्ड की टॉप 20 बेस्ट सिटीज़ की लिस्ट में उदयपुर 12वें नंबर पर है और अपना जयपुर 16वें नंबर पे। अपनी जगह इन दोनों सिटीज़ ने बनाई है टॉप 20 में। हालांकि जयपुर पिछली बार 5वें नंबर पे था, थोड़ा सा फिसल कर 16वें नंबर पे आया, लेकिन बॉस दुनिया के 10,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स को पीछे छोड़ते हुए टॉप 20 में टिके रहना भी कोई छोटी बात नहीं होती। और अगर बात करें एशिया के टॉप 10 बेस्ट सिटीज़ में, तो उदयपुर 8th रैंक पर है और जयपुर 10th रैंक पर रॉक कर रहा है। बस ग्लोबल लिस्ट में मैक्सिको का सैन मिगुल नंबर 1 पे है और एशिया में जापान का क्योटो नंबर 1 पे है। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा पोल नहीं था, इस सर्वे में दुनिया भर के करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और 6.5 लाख से ज़्यादा वोट्स डाले गए थे। और टूरिस्ट ने हमारे शहरों को किस बात पर फुल मार्क्स दिए वो जानते हैं। वो थे हमारे आमेर किला, हवा महल, पिछोला झील, बापू बाजार की शॉपिंग, हमारी कचौड़ी घेवर का स्वाद, और सबसे बढ़कर अतिथि देवो भव का हमारा राजस्थानी वेलकम। दोस्तों पर्यटन विशेषज्ञों की माने तो इस ग्लोबल पहचान से राजस्थान में इंटरनेशनल टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट बिजनेसेस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। यानी ज़्यादा टूरिस्ट, ज़्यादा बिजनेस, ज़्यादा ग्रोथ। तो जयपुर और उदयपुर वालों, आज तो पार्टी बनती है। मुझे फेसबुक पेज हमारा जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM फेसबुक पेज पर कमेंट कर लिख कर आप बता सकते हैं कि अगर कोई विदेशी मेहमान पहली बार राजस्थान आ रहा है तो आप उसे सबसे पहले कौन सी जगह लेकर जाएंगे, कौन सी जगह घुमाएंगे और क्या खिलाएंगे। चलिए इस ब्रॉड मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं एक और ट्रैक के साथ। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

प्यार में हो या रेलवे टिकट की कतार में, गुनगुनाना हमारी आदत है। किचन में करछी चलाए या ऑफिस में कंप्यूटर, गुनगुनाना हमारी आदत है। बच्चों के साथ खेलें या बुजुर्गों को सैर पर ले जाएं, गुनगुनाना हमारी आदत।

मैदान से खलिहान तक, सुबह से शाम तक गुनगुनाना हमारी आदत है, क्योंकि रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM जयपुर की सुरीली आदत, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद।

0: अपना साथी रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
4: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
3: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
6: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: तो खास है, कुछ तो बात है।
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, तन मैं हैं आपके साथ। और दोस्तों, आज 10:04 हो चुके हैं सैटरडे का ये शो, और आज हम जिस टॉपिक पर ये सवालों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मेलोडियस और संगीत से जुड़ा होगा। दोस्तों, ये है म्यूजिकल क्विज ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, और हम हैं शो मेरे सवालों का जवाब दो, जहां पर देने हैं आपको सवालों के सही जवाब, हम तक पहुंचाने हैं। हमारे टेलीफोन लाइंस 0141 एसटी कोड के साथ आप डायल कीजिए 2200800 और पहुंचा दीजिएगा हमारे सवालों के सही जवाब हम तक।
2: सुनते रहो।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट तन्मय, और संगीत दोस्तों हमारी रूह को सुकून देता है, लेकिन उस संगीत में मिठास घोलने वाले होते हैं देश के महान संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र। तो आज हम इस क्विज में खेलने वाले हैं एक मजेदार म्यूजिकल क्विज, और आज की थीम है प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक। मैं पूछूंगा सवाल और आपको बताना है कि ये

ये दिग्गज कलाकार कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? आपको बताना है उस वाद्य यंत्र का नाम जिसके लिए उस्ताद जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह रखा खान, ये दिग्गज कलाकार जिस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं, आपको बताना है उस वाद्य यंत्र, उस इंस्ट्रूमेंट का, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सही नाम। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुनते रहिए, रेडियो पिंक सिटी पर तन मैं है आपके साथ। और इस वाद्य यंत्र का एक हिंट भी आपको मैं अगले ट्रैक में दे सकता हूँ। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, तन्मय है आपके साथ और ये शो है मेरे सवालों का जवाब दो, जहां पर सवाल हम आपसे कर रहे हैं मशहूर वाद्य यंत्र के महान जो वादक हैं, जो कलाकार हैं, वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, वो कौन से वाद्य यंत्र के लिए पहचाने जाते हैं। ये सवालों का सिलसिला है मेरे सवालों का जवाब दो प्रोग्राम में।
1: Bang on, you've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.
0: तो दोस्तों, हमने आपसे सवाल किया था कि उस्ताद जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह रखा खान कौन सा जो प्रमुख वाद्य यंत्र है उसके लिए ये दिग्गज कलाकार जाने जाते हैं, और सही जवाब है इसका तबला। जी हाँ दोस्तों, तबले की थाप पर जब उस्ताद जाकिर हुसैन की उंगलियां थिरकती हैं तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, जो जाकिर हुसैन साहब के पिता भी थे, वो जब पंडित किशन महाराज जी ने जब तबला वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई थी, उसके बनारस घराने से थे उस्ताद पंडित किशन महाराज जी, जो तबला वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके गए थे। और हम तक इसका सही जवाब पहुंचाया है ओम प्रकाश चौहान जी ने, शशि बेनीवाल जी ने, सुशीला दत्ता जी ने, बाबू लक्ष्मीकांत जी ने, हरीश कुमार जी ने और अशोक कानोजिया जी ने हम तक इस सवाल का सही जवाब पहुंचाया है। अब आप तैयार हो जाइए अगले सवाल के लिए और अगले दिग्गज कलाकार का नाम सुनने के लिए और बताने के लिए कि वो दिग्गज कलाकार कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हैं।
1: Radio, Pink City. 100.3 FM, सुनते रहो।
0: तो दूसरा सवाल इस प्रोग्राम में है कि पंडित रविशंकर, जी हाँ दोस्तों, पंडित रविशंकर जी और उस्ताद विलायत खान जी कौन से मशहूर वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। आपको बताना है नाम उस वाद्य यंत्र का जिससे जुड़े हैं पंडित रविशंकर जी और उस्ताद विलायत खान जी। आपको बताना है उस वाद्य यंत्र का सही नाम। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर आपको बस पहुंचाने हैं अपने सही जवाब 0141 एसटीडी कोड के साथ। आप डायल कीजिए 2200800 और पहुंचा दीजिए सवाल का सही जवाब हम तक, पंडित रविशंकर जी और उस्ताद विलायत खान जी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: Bang on, you've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.
3: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं, तन मैं है आपके साथ और ये शो है मेरे सवालों का जवाब। तो जहां पर आपने सवाल, हम सवाल कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं आप हम तक सही एकदम

0: हम तक आप जुड़ सकते हैं टेलीफोन लाइन 0141 एसटीडी कोड के साथ। डायल करना है आपको 2200800, क्योंकि आज के जो सवाल हैं वो जुड़े हैं वाद्य यंत्र से, और उन वाद्य यंत्र को मशहूर करने वाले वो खास दिग्गज कलाकार।
1: सुनते रहो।
0: तो हमने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था सवाल कि पंडित रविशंकर जी और उस्ताद विलायत खान जी वो कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, और उसका सही जवाब है सितार। भारत की शास्त्रीय संगीत की पहचान सितार को पूरी दुनिया में अमर करने वाले का करने का जो श्रेय है वो जाता है भारत रत्न पंडित रविशंकर जी को। उस्ताद विलायत खान और निखिल बनर्जी की जो गायकी शैली है वो उसके साथ सितार वादन बेमिसाल रहता है। और हम तक इस सवाल का सही जवाब जिन्होंने पहुंचाया है उनके नाम हैं रेणु गोविल जी, बाबू लक्ष्मीकांत जी, संदीप सोंगरा, हरीश कुमार जी, शशि बेनीवाल जी और अशोक कानोजिया जी ने हम तक इस सवाल का सही जवाब पहुँचाया है। अब आप तैयार हो जाइए अगले सवाल के लिए।
1: Bang on, you've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.
0: दोस्तों अगला सवाल हम आपको करते हैं, और उससे पहले बता दें कि आपको फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज के जरिए इन सवालों के सही जवाब नहीं देने हैं। जो भी सही जवाब है, अगर आपको लगता है ये सही जवाब आपको आता है तो हमको टेलीफोन के जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, फ़ोन करके हम तक पहुंच सकते हैं। 0141 एसटीडी कोड है और डायल कीजिए आप 2200800। अगला सवाल ये है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। आपको बताना है उस वाद्य यंत्र का नाम जिससे जुड़े हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब। उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब वो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाते हैं वो जिसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। बताना है आपको वो कौन सा वाद्य यंत्र है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुनते रहिए, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, और ये प्रोग्राम है मेरे सवालों का जवाब दो। और सवाल है हमारे जुड़े वाद्य यंत्रों से और उनको बजाने वाले जो दिग्गज कलाकार हैं जिनके नाम के साथ जुड़ा है वो वाद्य यंत्र। रेडियो पिंक सिटी पर यह है सिलसिला सवालों का, और मैं हूं तन्मय आपके साथ। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: Bang on, you've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.
0: हमने आपसे किया था सवाल कि आपको बताना था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके उस्ताद हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। और सही जवाब है इसका शहनाई। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। शादी ब्याह या शुभ अवसर पर बजाई जाने वाले शहनाई को मांगलिक धुनों से निकलकर दुनिया के बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचाने का जो अद्भुत काम किया था वो सिर्फ बिस्मिल्लाह खान साहब ही कर सकते थे। और इसका सही जवाब हम तक पहुँचाया है हरीश कुमार जी ने, अशोक कानोजिया जी ने, शशि बेनीवाल जी ने, लीना बिंजू जी ने, सुनील टेलर जी ने, सुशीला दत्ता जी ने और शैलेश सुमानी जी ने। इतने सारे इस लोगों ने हम तक इस सवाल का सही जवाब पहुंचाया है। अब आपको देना है सही जवाब अगले सवाल का। रेडी रहिए।
1: सुनते रहो।
0: अगला सवाल भी एकदम सिंपल है, आपको बताना है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। जी हाँ दोस्तों, जब मशहूर जो नाम है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये कलाकार कौन से वाद्य यंत्र को अपनी सांसों से जीवंत करने के लिए जाने जाते हैं। आपको बताना है उस वाद्य यंत्र का नाम जिसके लिए जाने जाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। वो उस वाद्य यंत्र का नाम आपको बताना है। हमारे फ़ोन नंबर्स 0141 एसटीडी कोड के साथ आप डायल कीजिए 2200800 और पहुंचा दीजिए सवाल का सही जवाब हम तक।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: Bang on, you've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.
3: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप, तन में हैं आपके साथ। और सवालों का जो सिलसिला है जिसे हमने आज म्यूजिकल ट्रैक पर पिरो दिया है, उस म्यूजिकल ट्रैक पर जो हमने आपसे सवाल किया था वो था कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो इन्होंने, ये कलाकार कौन से वाद्य यंत्र को अपनी सांसों से जीवंत करने के लिए जाने जाते हैं, और इसका सही जवाब है बांसुरी। जी हाँ दोस्तों, बांसुरी की जो मधुर तान सुनते ही मन में श्री कृष्ण की भक्ति और शांति में डूब जाता है जो मन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी की धुन न केवल शास्त्रीय संगीत बल्कि बॉलीवुड सिनेमा में भी जादू बिखेरती है। तो हम तक इसका सही जवाब जिन्होंने पहुंचाया है, उनके नाम हैं बाबू लक्ष्मीकांत जी, शशि बेनीवाल जी, हरीश कुमार जी, अशोक कानोजिया जी, शैलेश सुमानी जी, सुशीला दत्ता जी और सुरेश कुमार छिपा जी, जिन्होंने हम तक इस आखिरी सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है। दोस्तों वक्त की बंदिश है, नहीं तो मेरे पास और भी कई सवाल थे और उन सवालों के जरिए मैं आपसे पूछ सकता था कई सवाल, जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर से जुड़े हैं, संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, अमजद अली खान साहब सरोद से जुड़े हैं, डॉक्टर एल

सुब्रमण्यम और टी एन कृष्णन ये वायलिन से जुड़े हैं और एस बालचंद्रन और असद अली खान ये वीणा से जुड़े हैं। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने आपको ये सब नाम बता दिए हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी के चलते हम आपसे ये सवाल नहीं कर पाए हैं, मगर आप हमसे जुड़े, आपने सवालों के सही जवाब हम तक दिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुरीला सफ़र था हमारा? उम्मीद है कि आज के जो इस क्विज़ में आपको मज़ा तो आया होगा और साथ में भारतीय संगीत के इन अनमोल जो रत्न हैं उनके बारे में कुछ नया जानने को भी आपको मिला होगा। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: युवा साथी रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप, तन्मय है आपके साथ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमराज, और आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM पर अपना पसंदीदा शो शायरी से यारी। दोस्तों, फैज अहमद फैज साहब क्या खूब कहते थे कि कर रहा था गम जहां का हिसाब, कर रहा था गम जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। दोस्तों, कभी कभी दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूरज ढल जाता है और कमरा खामोश होने लगता है तो खिड़की के पर्दे हल्के से हिलते हैं, कोई आहट नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं आती, फिर भी लगता है कोई आपके बिल्कुल पास बैठ गया है। ये कोई इंसान नहीं होता साहब, ये होती हैं यादें।

दोस्तों उर्दू में कहते हैं ना, याद रफ्ता, यानी गुजरा हुआ वक्त जो लौटता तो नहीं लेकिन दिल के किसी कोने में चिराग बनकर जलता रहता है। अहमद फराज साहब इस एहसास को क्या खूबसूरती से पिरोते हैं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। दोस्तों आज शायरी से यारी, ये पूरी महफिल नाम है उसी याद के, उस याद को जो कभी हंसाती है कभी रुलाती है तो कभी बेवजह होठों पर एक हल्की सी मुस्कान छोड़ जाती है। शायरी से यारी में आज यारी है याद से। दिल को थाम लीजिए, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और चलिए मेरे साथ इस सुरीले सफर पर, शायरी से यारी में।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, आप सुन रहे हैं शायरी से यारी। अच्छा एक बात बताइए, यादों का कोई पता होता है क्या? कोई शहर, कोई पिन कोड? शायद नहीं, लेकिन फिर भी जब किसी पुराने इत्र की महक हवा में घुलती है तो 10 साल पुराना वो दिन एकदम सामने आ खड़ा होता है। जब किसी पुरानी किताब के पन्नों को बीच में, उन पन्नों के बीच में सूखा हुआ सा गुलाब मिलता है तो लगता है जैसे कल की ही बात हो। और फिर बात जब पहली मोहब्बत की याद हो तो लहजा खुद ब खुद शायराना हो जाता है। मुनीर नियाजी साहब ने यादों के इस ताने बाने को बड़े सादे शब्दों में पिरोया था। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझको मरने का शौक भी था। कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझे मरने का शौक भी था। जब जाने का वक्त आया तो हर राह को मुझको बुलावा था। पर याद का असली जादू तो बशीर बद्र साहब के इस शेर में छिपा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

दोस्तों कितनी अजीब बात है ये। हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, नए शहर बदलते हैं, नए लोग मिलते हैं, लेकिन पुरानी यादें हमारे साए की तरह पीछे पीछे चलती रहती हैं। वो कभी शिकायत नहीं करती, बस साथ निभाती हैं। दोस्तों ये है शायरी से यारी, और आज यारी है हमारी यादों से।

चीजों से होता है, एक बारिश और दूसरी चाय। जी हाँ दोस्तों, कभी भाप उड़ती चाय के प्याले को देखिएगा, उससे उठती धुएं की जो लकीरें हैं, जो भाप की जो लकीरें हैं, बिल्कुल हमारी सोच जैसी होती हैं, घूमती हुई सी, पुरानी यादों में खो जाती हुई सी। अक्सर लोग कहते हैं कि यादें दर्द देती हैं, पर मेरा मानना थोड़ा अलग है। यादें तब दर्द देती हैं जब हम उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें एक पुराने दोस्त की तरह गले लगा लिया जाए तो वो दर्द भी मीठा लगने लगता है। निदा फाजली साहब लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजेपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जारी है प्रोग्राम तराने नए पुराने।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्र
1: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त, प्रदर्शनकारियों से तत्काल वापस लौटने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा युवाओं के हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और प्रदेश में इस सीजन में अब तक कम बारिश हुई, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की बैठक हुई। इसके बाद सीजेपी की ओर

0: से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई और प्रदर्शनकारियों से तत्काल प्रभाव से वापस लौटने का आग्रह किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास तथा आशुतोष रांका से लंबी बातचीत की। इसके बाद हुई प्रेस वार्ता में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है।
1: हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ।
0: श्री नड्डा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नीट पेपर लीक मामले के प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है, उन्हें नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधारों पर मंथन होगा।
2: कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए, जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन दुखी था। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और वे युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं उठा सकें। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए नए कानून पर मोहर लगाई है, जिसमें दोषियों को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए 3 महीने में सजा सुनाने का प्रावधान है। दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम छात्रों के हित में है और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। सहकारिता के मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी की आज से जयपुर में शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने HCM रीपा से इस सेवा को शुरू किया। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक भी मौजूद रहे। भारत टैक्सी आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के लिए लाभदायी परिवहन व्यवस्था की दिशा में अहम पहल है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, साथ ही ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल ने आज जयपुर में चरक भवन में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भी मुलाकात की। लोकभवन में हुई इस भेंट में दोनों ने देश और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अंग प्रत्यारोपण सहित कई महंगे इलाज मुफ्त मिल रहे हैं। मां योजना में अब तक 2600 से ज्यादा मरीजों को राजस्थान और अन्य राज्यों में अंग प्रत्यारोपण तथा दूसरे इलाज का लाभ मिला है। इन उपचार पर अब तक 120 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। योजना के तहत जयपुर में 1200 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। इसके अलावा कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किए गए। योजना में 107 मरीजों ने राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों के अस्पतालों में इलाज करवाया। गौरतलब है कि अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपचार पूरी तरह कैशलेस है और मरीज को इलाज के लिए कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ती। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी देश भर के 400 से अधिक युवा प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने की 4 से 30 तारीख तक दो चरणों में हुआ था। प्रतिभागियों का चयन एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। इसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 27वां करगिल विजय दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन ऑपरेशन विजय के अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पावन अवसर है, जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों से मुकाबला कर देश की संप्रभुता की रक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल संघर्ष की शुरुआत मई 1999 में हुई, जब पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर करगिल, द्रास और काकसर क्षेत्रों की चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाली दुर्गम चोटियों, बर्फीली ठंड, ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच जीत हासिल की। करगिल विजय दिवस पर समूचा राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा करने वाले अमर वीरों को नमन करता है। इस मौके पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर आज 2 दिन के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर मुख्य करगिल विजय दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अब तक सिर्फ फलौदी जिले में ही असामान्य बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 25 जुलाई के बीच 5 जिलों में अत्यधिक, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। इस बीच सरहदी जिले जैसलमेर में आज सुबह से ही रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। बाड़मेर जिले के चौहटन, बीजासर, नवातला और अन्य क्षेत्रों में बरसात से कई जगह पानी भर गया और कच्चे मकान ढह गए। वहीं कल श्रीगंगानगर और सिरोही जिले में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। आबूराज में 20 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पाली, जालौर और सिरोही जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। कल उदयपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालांकि ज्यादातर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आम जन को जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखने तथा जल भराव रोकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप असवाल ने मौसमी बीमारियों में बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने की अपील की है।
4: हमने सभी जिलों में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई जो इस मौसम में मच्छर जनित रोगों, जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसा कि मैंने बताया आशा और एएनएम है, इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं, विशेषकर इस मौसम के लिए। मानसून का आनंद लें बहुत जरूरी है लेकिन वो आनंद लगातार रहे इसके लिए सजग रहें, चिकित्सा कर्मियों की बात सुने और समय रहते चिकित्सक को दिखाएं, विलम्ब नहीं करें।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर के जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यहां शूटिंग एकेडमी शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। श्री राठौड़ आज जगतपुरा शूटिंग रेंज में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में बोल रहे थे। उन्होंने प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में विजयी रहे निशानेबाजों को पदक प्रदान किए। 23 जुलाई से शुरू हुए और 29 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त, प्रदर्शनकारियों से तत्काल वापस लौटने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा युवाओं के हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और प्रदेश में इस सीजन में अब तक कम बारिश हुई, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अविनाश मल्होत्रा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त हस्तांतरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम मिनी सचिवालय में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से योजना की 23वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। कार्यक्रम में जिले के 1,45,114 लाभार्थी किसानों को 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, सेना के अधिकारी, जवान, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। अलवर शहर में सिंचाई विभाग द्वारा 3,34,00,000 रुपए की लागत से बने भाखेड़ा एनिकट का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस एनिकट को जनता को समर्पित किया। इस एनिकट से जल संरक्षण और भूजल स्तर में वृद्धि होगी और शहरवासियों के लिए एक नया पर्यटन स्थल मिलेगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने नटनीका 12 से जैसमन झील तक करीब 36 करोड़ रुपए की राशि से नहर पक्कीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। नहर पक्कीकरण के कार्य से जैसमन झील तक अधिक पानी पहुंचेगा तथा भूजल स्तर में वृद्धि होगी और किसानों को भी सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। अलवर में नीट यूजी परीक्षा 2026 का आयोजन जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। जिले में कुल 9,731 अभ्यर्थियों में से 8,945 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अलवर जिले में 3,089 वरिष्ठ नागरिकों ने निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किए। अलवर के कलेक्ट्रेट सभागार में इसके लिए लॉटरी निकाली गई, जिनमें 1600 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा के लिए चयन किया गया। 181 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा के तहत तथा 1489 यात्री रेलगाड़ी के जरिए तीर्थ यात्रा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का 28 जून को जिला मुख्यालय पर आयोजन हुआ, जिसमें 14,770 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा जिला मुख्यालय पर 53 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक के 2,75,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने राजकीय चिकित्सालय में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो मुक्त भारत का संदेश दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर अलवर में NTCA द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में टाइगर री इंट्रोडक्शन, अवसर और चुनौती विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया पर्यटकों के लिए 1 जुलाई से आगामी 3 महीने के लिए बंद हो गया है, लेकिन बफर जोन खुला है। इस एरिए में 2 पर्यटक जोन के लिए 19 जिप्सियाँ लगाई गई है जो पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराएगी। शिक्षा और पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर बीते दिनों अलवर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने रैणी तहसील में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वाना के नवनिर्मित भवन तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पिनान के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने विभिन्न पंचायतों और ग्रामीण इलाकों का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अलवर जिले के नारायणपुर के कोलाहेड़ा की बावड़ी की ढाणी निवासी वायुसेना के जवान विक्रम पायला का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। सेना के वाहन से उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ पैतृक गांव पहुंचा। जवान के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जवान विक्रम पायला को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 196 वर्ष पुराने ऐतिहासिक इंद्र विमान पर निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालु बाराती के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर अलवर जिला कलेक्टर की ओर से 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया। इसी के साथ अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी बीच भी बातचीत, पाछे नौजवानों आंदोलन खत्म, प्रदर्शन करण वालों तुरंत पाछा जावण री अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दिनो, कहो नौजवान रा हित माय फैसलो लीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम माय शामिल भेवण वाला सा गई बातचीत करेला। और प्रदेश माय ई चौमासा माय हाल ताई कम में बरसियो, 20 जिला माय सामान्य और 15 जिला माय सामान्य कम पानी बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माय नौजवाना कानियों चलाई चियो आंदोलन खत्म फेवन रो ऐलान करतियो चियो है। नई दिल्ली माय आज खबर नवीसा सागे बातचीत रे दौरान कॉकरोच जनता पार्टी रा प्रवक्ता आशुतोष रांका कहो कि सरकार वारी मांगा मान लेनी है।
1: हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विथड्रॉ।
3: इनु पहले केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा बीच आज नई दिल्ली में तीजा दौर री मीटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, CJP रा प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका सागे लंबी बातचीत कीनी। इन पाछे CJP आंदोलन खत्म करण रो ऐलान करता थका प्रदर्शन करण वालाओं पाछा लौट जावन री अरज कीनी। श्री नड्डा खबर नवीसा ने बतायो कि नीट पेपर लीक मामला माय प्रदर्शन करण वाला रे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जावेला। वह कहो कि नीट पेपर लीक रा पीड़ित परिवारों रा प्रति सरकार री पूरी सहानुभूति है, अरवाना नियमा रे मुताबिक मुआवजो दियो जावेला। नड्डा कहो कि शिक्षा व्यवस्था माय सुधारा रा बारा माय विचार करियो जावेला।
2: कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे।
3: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिनो है। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफो सौंपण री जानकारी दीनी। मारा इस्तीफा में श्री प्रधान मांडियो के मारी परीक्षा माफिया रे कारण किणी विद्यार्थी री जिंदगी खराब नी वेवन देवन री कोशिश रही। श्री प्रधान मांडियो के लाडला 10 दिन माए देश माए विद्यार्थियों का न्यू रीट परीक्षा पेपर लीक रा मामला माए करया जा रहा प्रदर्शन वह दुखी है। वे मांडियो का नौजवान भारत रो भविष्य भेवन सागे नुओ और विकसित भारत बनावन वाला है जो देश रे असली ताकत है। श्री प्रधान आगे मांडियो के जंतर मंतर सामी और आखा देश माए लाडला दिना उपजा हालातों विद्यार्थियों रो भविष्य कानूनी दाव पेच माए उलझन बचावन और वारो भगत पढ़ाई माए लगार करियर बनावन माए कामयाबी हासिल करन री मंशा सागे वे प्रधानमंत्री ने इस्तीफो भेज दिनो है। वह कहो का नौजवान देश सबू मोटी ताकत है और वह इनने भ्रम राकु चक्र माए नी फंसबा दे वेला। श्री प्रधान कहो के वह इस्तीफा ई कारण दिनो ताकि जंतर मंतर सामी और देश माए जो हालात बनिया वारो फायदो देश विरोधी ताकता नी उठा सके। ई बीचे केंद्र सरकार पेपर लीक रा मामला रोकण सारू नुओ कानून बनावनो तय किनो है, जिन तेत दोषियां ने फास्ट ट्रैक अदालत रे जरिए 3 महीना माए सजा सुनावन रो प्रावधान है। इन तेत दोषियां ने 10 साल ताई री कैद और 10 करोड़ रुपया ताई रा जुर्माना री सजा दी जा सकेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहकारिता रा आधार उ चलाई जावन वाली भारत टैक्सी री आज जयपुर माए राखी जा कार्यक्रम माए शुरुआत कीनी। ई मौके केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ई मौजूद हा। भारत टैक्सी जनता सारू आवन जावन री साफ कोई सागे फायदेमंद व्यवस्था री पहल है। इन रो मकसद मुसाफिरा ने आवन जावन री हिफाजत सागे किफायती भरोसेमंद और आसान सुविधा मुहैया करावन सागे गाड़ी चलावन वाला ने माली तौर मजबूत बनावनो है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना रा तहत गंभीर बीमारियां रा मरीजा ने उपतु अंग लगावन समेत कई महंगा इलाज मुफ्त मिल रहा है। मां योजना रा तहत हाल ताई 2,672 मरीजा ने राजस्थान और दूजा राज्य माए अंग प्रत्यारोपण और दूजा इलाज रो फायदो मिलियो है। इमाथे हाल ताई 120 करोड़ रुपयों बत्तो खर्चो करीचियो है। योजना रा तेज जयपुर माए 1,232 दूजी किडनी लगाई ची। ईसा गई कान माए कॉकलियर इम्प्लांट, खून रो बोन मेरो ट्रांसप्लांट और हृदय और फेफड़ाई दूजा लगाई चिया। योजना रा तेज 107 मरीजा ने प्रदेश में बाहर दूजा राज्य रा अस्पताल माए इलाज मुफ्त मिलियो। ध्यान जोग है कि उपतु अंग लगावन रा इलाज माए नकद रकम री जरूरत नहीं वह है और मरीज ने इलाज सारू कोई खर्चो नहीं करनो पड़े है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे करियो चावेला। ईसा गई AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे ही ओ कार्यक्रम प्रसारित करियो चावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल सिंजा विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 माए शामिल हुए वन वाला 432 लोगों सागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बातचीत करन रो कार्यक्रम है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लाडला महीना री 4 और 30 तारीख बीच दो दौर माए राखी चियो हो। इन माए सवाल जवाब री ऑनलाइन होड़ रे जरिए 3,00,000 नौजवान शामिल फिया हा। 27वां कारगिल विजय दिवस काल मनायो जावेला। ओ दिन 1999 माय भया करगिल युद्ध माय ऑपरेशन विजय रा अमर वीरान श्रद्धांजलि देवन सारू मनायो जावे है। करगिल युद्ध माय भारत रा रण बांकुरा पाकिस्तान रा फौजियां और घुसपैठियां मुकाबलो कर देश री संप्रभुता री हिफाजत की नी ही।

0: पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान बीचे करगिल री लड़ाई मई 1999 माई वी जद पाकिस्तानी फौजी और घुसपैठिया नियंत्रण रेखा पार कर करगिल द्रास और काक्सर हल्का री चोटिया माथे कब्जो कर लीनो। भारत री फौज जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता था का 16,000-18,000 फीट री ऊंचाई वाली मुश्किल चोटियां, बर्फीला तूफान और ठंड, ऑक्सीजन री कमी और दुश्मन री लगातार गोलाबारी पीछे जीत हासिल कीनी। कारगिल विजय दिवस रे मौके पूरो देश मायड़ भूमि री हिफाजत करण सारू जान री बाजी लगा देवण वाला अमर वीरा ने नमन करे है। ई मौके द्रासरा कारगिल युद्ध स्मारक माथे आज 2 दिन रा खास कार्यक्रम शुरू व्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल समर स्मारक माथे शहीदा ने श्रद्धांजलि देर करगिल विजय दिवस रा खास जलसरी अगुवाई करेला। सलेहा गाजी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: अरबे मौसम प्रदेश में ई चौमासा रे दौरान हाल ताई केवल फलौदी जिला में आई असामान्य बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग री ओर मिली जानकारी रे मुजब 1 जून नु आज ताई 5 जिला में घनी, 20 जिला में सामान्य और 15 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो। इन बीच सरहदी जिला जैसलमेर में आज सवारे वहीं रुक रुक कर छाटो छिटको फैर रियो है। बाड़मेर जिला रा चौहटन, बीजासर, नवातला और दूजा हल्का में भी बरसात कई थोड़ा पानी भर गयो और कच्चा मकान ढस गया। काल श्रीगंगानगर और सिरोही जिला में खटे खटे घनी जोरदार बारिश हुई। आबूराज में 20 सेंटीमीटर पानी परसियो। बरसात री ऋतु में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया समेत नरी नरी मौसमी बीमारियां बचाव सारू जनता में जाग जगाई जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री ओर एंटी लार्वा अभियान ने चलायो जा रियो है। विभाग रा अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप असवाल आकाशवाणी समाचार सागे खास बातचीत रे दौरान बुखार या दूजा लक्षण नजर आवण री सूरत में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र मथ जाँच करावण री अरज कीनी।
2: हमने सभी जिलों में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई जो इस मौसम में मच्छर जनित रोगों, जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसा कि मैंने बताया आशा और एएनएम है, इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं विशेषकर इस मौसम के लिए।
0: आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी बीच भी बातचीत पाछे नौजवान आरो आंदोलन खत्म, प्रदर्शन करने वालों तुरंत पाछा जावन री अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दीनो, कहो नौजवान आरा हित में फैसलो लीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। और प्रदेश में ई चौमासा में हाल ताई कम में बरसियो, 20 जिला में सामान्य और 15 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी

0: पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
3: प्रस्तुत है फौजी भाइयों की सेवा में विशेष जयमाला कार्यक्रम।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: फौजी भाइयों की सेवा में आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा।
2: फौजी भाइयों को अनूप जलोटा का नमस्कार।

0: आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे गाने सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत प्रिय हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप ऐसे माहौल में बैठे हैं जहाँ हर पल आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस कठिनाइयों से अगर मन को थोड़ा दूर करना हो, मन को थोड़ा हटाना हो, तो एक बड़े ही अच्छे एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको पहला गाना ऐसा सुनाने जा रहा हूँ जो आज का सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना है, कजरारे कजरारे, मुझे भी बहुत प्रिय है। लीजिए आप भी सुनिए।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

फौजी भाइयों, आप हमारे देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देते हैं। आपके चरणों को छूने की इच्छा होती है। जब भी कभी आर्मी के लिए अवसर मिलता है गाने का, तो हम अपने को धन्य समझते हैं। और ये वो देश है जो सच में सोने की चिड़िया है। तभी तो सारे संसार का इस ओर ध्यान है। सारे संसार की नज़र, हर देश की नज़र हमारे देश के ऊपर है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।

फौजी भाइयों, मन्ना डे साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद है। इस गाने से एक और बड़ा काम हुआ था कि प्राण साहब जो विलन का काम किया करते थे, इस गाने का कुछ ऐसा असर हुआ, उन्होंने इस पर जो एक्टिंग की थी कि उसके बाद वो एक बहुत अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए, शरीफ रोल अदा करने वाले इंसान बन गए। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों।

0: आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा।
1: फौजी भाइयों, हाल ही में एक सिंगर ने बहुत नाम पैदा किया। एक उनका गाना जो मुझे बहुत पसंद है और वो लिखा गया भी कमाल है, जावेद अख्तर साहब ने इसको लिखा भी कमाल है, कुमार सानू जी ने इसे बहुत अच्छा गाया है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

0: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
2: देवदर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
2: देवदर्शन धूप।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: एक नई खुशी। जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा।
1: फौजी भाइयों, एक ऐसे सिंगर को मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ जिनकी आवाज सुन के लगता था जैसे 100 आवाजें एक साथ गा रही हो, जैसे एक ऑर्गन बज रहा हो। हेमंत कुमार साहब, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा कि मेरा हमदम मिल गया।

फौजी भाइयों, मदन मोहन साहब एक कमाल के कंपोजर हुए हैं, और सोने में सुहागा लता जी की आवाज, इन दोनों ने मिलकर ऐसा ऐसा काम किया है जो हमेशा याद रहेगा।

फौजी भाइयों, मैं आपको एक अपना भजन जरूर सुनाना चाहूंगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि इसी भजन से मेरी पहचान बनी। कई बार होता है मैं कहीं जा रहा हूं और पीछे से कोई ये भजन गुनगुना के मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन

तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया जाने माने गायक भजन सम्राट अनूप जलोटा ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।

0: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
0: देव आनंद।
4: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
0: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। आप हैं विविध भारती के संग।
5: जिज्ञासा।
0: जिज्ञासा। जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी पर अभी तक चढ़ा होगा फुटबॉल का बुखार। आपने देखा कि किस तरह से फीफा के फाइनल में अर्जेंटीना ने बहुत ही फीका और निराशाजनक प्रदर्शन किया। वर्ल्ड चैंपियंस इस तरह से नहीं लगे कि वो अपने पूरे जोश में हैं, और स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हरा कर दूसरी बार पुरुष फुटबॉल विश्व कप अपने नाम कर लिया है। मैच का एकमात्र गोल किया फेरॉन टोरेस ने। उन्होंने 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही अर्जेंटीना की कड़ी चुनौती को आखिरकार तोड़ दिया। यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने पूरे मुकाबले में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की तुलना में ज्यादा मौके बनाए, ज्यादा आक्रामकता दिखाई, ज्यादा जोश दिखाया। अगर हम अर्जेंटीना के खेल की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव लग रहे थे और मुकाबले की रफ्तार को कम करने वाला खेल खेल रहे थे। मैच के 106वें मिनट में फेरान टोरेस ने रिप्लेसमेंट खिलाड़ी नीको विलियम्स के हेडर को कंट्रोल करते हुए नजदीक से जोरदार शॉट लगाया, जिसे अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज रोक नहीं पाए, और यही गोल स्पेन को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए काफी साबित हुआ। फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में भले ही अर्जेंटीना को स्पेन के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा हो और टीम अपना विश्व कप का खिताब बचाने में नाकाम रही हो, लेकिन इस

मैच के एक तरह से हीरो रहे उनके गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज। उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने 120 मिनट तक शानदार गोलकीपिंग करते हुए स्पेन के लगातार हमलों को नाकाम किया। मार्टिनेज ने इस फाइनल में कुल 11 सेव किए, जो 1966 से आधिकारिक आंकड़े दर्ज होने के बाद किसी भी फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में किसी गोलकीपर के द्वारा किए गए सबसे ज्यादा सेव हैं, यानी ये भी एक रिकॉर्ड बन चुका है। ये उपलब्धि उन्हें विश्व कप इतिहास के सबसे यादगार गोलकीपिंग प्रदर्शनों में शामिल करती है। अतिरिक्त समय के 106वें मिनट में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरोन टोरेस आखिरकार मार्टिनेज को चकाने में सफल रहे। टोरेस ने बॉक्स के अंदर मिले मौके को गोल में बदलते हुए स्पेन को जो 1-0 की बढ़त दिलाई वो आखिर तक कायम रही। अर्जेंटीना ट्रॉफी तो नहीं बचा सकी, लेकिन एमिलियानो मार्टिनेज ने अपने साहस, अपने धैर्य, अपनी जिद, बेमिसाल गोलकीपिंग के जरिए ये साबित कर दिया कि हार के बाद भी कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन अमर हो जाते हैं। विश्व कप 2026 के फाइनल को कई सालों तक स्पेन की जीत के साथ साथ मार्टिनेज के इस बेमिसाल जुझारू प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा।

इस बार जिज्ञासा कार्यक्रम में हम नमन कर रहे हैं वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर गैरी सोबर्स को, जिनका बीते शुक्रवार यानी 17 जुलाई को निधन हो गया। क्रिकेट जगत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर के रूप में जाने गए गैरी सोबर्स एक बेमिसाल खिलाड़ी थे। हम आज आपको बता रहे हैं कि किस तरह के आंकड़े उनके नाम पर दर्ज हैं। सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेला है। उन्होंने 1974 में इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला खेला था। इससे सिर्फ 3 साल पहले यानी 1971 में वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, इसलिए केवल एक ही वनडे खेला था गैरी सोबर्स ने। आपको बता दें, गैरी सोबर्स का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1936 को बारबाडोस के सेंट माइकल में, और 1954 में वेस्टइंडीज के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपने इंटरनेशनल करियर में 93 टेस्ट और एक वनडे खेला था। 20 सालों का लंबा करियर था गैरी सोबर्स के नाम। 93 टेस्ट की 160 पारियों में बैटिंग करते हुए 57.78 के औसत से 8,032 रन उन्होंने बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 26 शतक और 30 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर नाबाद 365 रनों का था। वहीं इकलौते वनडे में उन्होंने 6 गेंदें खेली, लेकिन कोई रन वो नहीं बना सके। इसके अलावा मीडियम फास्ट और स्पिन दोनों तरह की गेंदबाजी करने की काबिलियत रखने वाले गैरी ने 159 पारियों में 34.03 की औसत से 235 विकेट लिए और उनका बेस्ट रहा 8/80। इसके अलावा उन्होंने 6 बार 5 विकेट हॉल और 8 बार 4 विकेट हॉल भी लिए थे। बाकी वनडे की एक पारी में 1 विकेट उन्होंने लिया था। वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी गेंदबाजी में बदलाव कर लिया करते थे, जिससे टीम को काफी फायदा पहुंचता था। इसीलिए शायद उन्हें सबसे सफल ऑलराउंडर कहा जाता है। क्रिकेट के इतिहास में जब भी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने की बारी आती है, तो सबसे पहले मॉडर्न क्रिकेट में युवराज सिंह का नाम आता है। युवराज सिंह ने 2007 में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का कमाल किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैरी सोबर्स उनसे 39 साल पहले 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ चुके थे। गैरी सोबर्स ने 1968 में नॉटिंघम शायर के लिए खेलते हुए लगातार 6 छक्के लगाए थे। वो एक आक्रामक बल्लेबाज थे और हालात के मुताबिक अपनी बैटिंग को बदल लिया करते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज थे। 1968 में नॉटिंघम शायर के लिए खेलते हुए ग्लोमॉर्गन के खिलाफ उन्होंने ये कारनामा किया था। बाएं हाथ के शानदार बैटर सोबर्स ने 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन बनाए थे। ये रिकॉर्ड 36 साल तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर के रूप में कायम रहा। वो एक बेहतरीन बॉलर भी थे, जो स्पिन और सीम दोनों तरह की बॉलिंग करते थे। नॉटिंघम शायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने वाले सोबर्स को 1975 में क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। विजडन ने उन्हें 20वीं सदी के सबसे सम्मानित 5 क्रिकेटर्स में शामिल किया।

हार्ट और ब्रेन की तरह अब कान में भी अटैक पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञ इसे SNHL यानी सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस या ईयरिंग स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें अचानक सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है। कान के पर्दे से ब्रेन तक पहुंचने वाली कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व खराब होना कान में पड़ने वाले दौरे का कारण बन रही है। विशेषज्ञ इसे कहते हैं SNHL, जैसा कि हमने आपको बताया। और हाल ही में प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक भी इसी तरह की बीमारी की चपेट में आ गई थीं, जिससे उनके सुनने की क्षमता तकरीबन खत्म हो गई थी। ENT विशेषज्ञ ये बताते हैं कि SNHL एक ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति को अचानक से सुनाई देना बंद हो जाता है। विशेषज्ञ इसे आम बोलचाल की भाषा में कान का दौरा कहते हैं या ईयर स्ट्रोक कहते हैं। कान में बिजली के तार के समान दो तरह की नसें होती हैं, जिन्हें कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व कहते हैं। ये नसें कान के अलग अलग हिस्सों से होते हुए सीधे मस्तिष्क तक जुड़ती हैं। जब कोई व्यक्ति अधिक शोर के संपर्क में आता है या किसी ऊंचाई वाले इलाके में पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पहले चरण में ये नर्व कान के पर्दे पर असर डालती है। इसकी वजह से पर्दा कंपन करने लगता है। कंपन तेज होने की वजह से ये स्टेप्स हड्डी कॉक्लिया के द्रव में तरंगे पैदा होने लगती हैं। द्रव में हजारों हेयर कोशिकाएं होती हैं। इसका प्रभाव और अधिक बढ़ने पर तरंगे मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं। ये ब्रेन में विद्युत आवेग पैदा करने लगती हैं, जिससे सुनाई देना पूरी तरह बंद हो जाता है। ये स्थिति लगातार बिना चिकित्सकीय सलाह के ड्रॉप डालने, अधिक समय तक हेडफोन लगाने और इंटरनल वायरल संक्रमण से भी हो सकती है। कई बार SNHL में धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक SNHL बीमारी वैसे तो हर उम्र के लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन बच्चों में इसका खतरा ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों के कान बहुत कोमल होते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों में इसका खतरा और अधिक बढ़ जाता है जो दिमागी बुखार या रुबेला जैसी बीमारी की चपेट में आए हों। अचानक सुनने की क्षमता शून्य होने के बाद 12 घंटों के भीतर डॉक्टर के पास अगर आप पहुंच जाते हैं, तो इस स्थिति को संभाला जा सकता है। चक्कर आना इसके शुरुआती लक्षणों के रूप में शामिल है। हम अक्सर कान में हल्का भारीपन या कम सुनाई देने जैसी समस्याओं को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कान में मैल जम गया होगा या सर्दी जुकाम की वजह से ऐसा हो रहा होगा और कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अचानक एक कान से सुनाई देना कम हो जाए या पूरी तरह से बंद हो जाए, तो इसे हल्के में कतई नहीं लेना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार कई बार ये समस्या नॉर्मल कारणों से होती है, लेकिन कुछ मामलों में सडन सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस का संकेत हो सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है और अगर समय रहते इसका तुरंत इलाज ना शुरू किया जाए, तो सुनने की क्षमता हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है। लेकिन समय पर पहचान और सही इलाज से कई मरीजों की सुनने की क्षमता दोबारा वापस आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसके कारणों, लक्षणों और इलाज के बारे में सही जानकारी हो। अचानक एक कान से कम सुनाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? कान में मैल जम जाना। कई बार कान में जरूरत से ज्यादा वैक्स जमा हो जाता है, जिससे आवाजों का रास्ता बंद हो जाता है और सुनने में परेशानी होने लगती है। इसके लक्षण कान में भारीपन महसूस होना, खुजली होना, आवाज का दबा दबा सुनाई देना हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ड्रॉप्स या सुरक्षित तरीके से मैल निकाल देते हैं और सुनने की क्षमता सामान्य हो जाती है। कान में संक्रमण या तरल पदार्थ जमा होने से भी कई बार ऐसा होता है। सर्दी, फ्लू, एलर्जी या गले के संक्रमण के बाद कान के पर्दे के पीछे तरल पदार्थ जमा हो सकता है। इससे आवाज का कंपन ठीक से अंदर नहीं पहुंच पाता है। इसके लक्षण कान में दर्द, बुखार, कान बंद होना जैसे एहसास हैं। और वायरल संक्रमण अक्सर कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, जबकि बैक्टीरियल संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। यूस्टेशियन ट्यूब में रुकावट। ये ट्यूब कान के अंदर और गले के बीच दबाव को संतुलित करने का काम करती है। एलर्जी, साइनस या जुकाम की वजह से इसमें सूजन आ सकती है। बैरोट्रॉमा यानी दवाई की वजह से चोट से भी ऐसा होता है।

हवाई यात्रा, पहाड़ों की यात्रा, स्कूबा डाइविंग वगैरह के दौरान वातावरण का दबाव तेजी से बदलता है। इससे कान में पॉप जैसी आवाज आ सकती है और सुनाई देना प्रभावित हो सकता है। इस स्थिति में अक्सर बार बार निकलना, जमाई लेना या च्युइंगम चबाना मददगार हो सकता है। कई बार तेज आवाज का भी असर होता है। लंबे समय तक तेज संगीत, मशीनों या पटाखों जैसी तेज आवाजों के संपर्क में रहने से कान के अंदर मौजूद सेंसिटिव सेल्स पर असर पड़ सकता है। और जैसे कि हमने आपको बताया, SSHL में भी ऐसा होता है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, जिसमें कुछ घंटों या अधिकतम 3 दिनों के अंदर अचानक सुनने की क्षमता कम हो जाती है। कई बार मरीज सुबह उठता है और उसे एक कान से आवाज कम सुनाई देती है। इसके साथ कान में बजने की आवाज, चक्कर आना, संतुलन बिगड़ना, कान में पॉप या क्लिक महसूस होना, बिना दर्द के सुनाई देना कम हो जाना जैसे लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर ये कहते हैं कि 72 घंटे के अंदर इसका इलाज ही शुरू हो जाना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। तो ये एक बात है जो बहुत ही गंभीर है। साल 2024 में एक उड़ान यात्रा के बाद जानी मानी गायिका अलका याग्निक को भी सुनाई देना बंद हो गया था। उन्हें बाद में पता चला कि ये SNHL यानी सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस है। इस समस्या के कारण उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई और वो संगीत जगत से दूर हो गई थी। जिज्ञासा कार्यक्रम में अब हम कारगिल विजय दिवस की बात कर रहे हैं। कारगिल विजय दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 26 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। 26 जुलाई के दिन 60 दिन के युद्ध के बाद भारत को विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। 1999 की सर्दियों में पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने नियंत्रण रेखा पार करके कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की ऊंची और टैक्टिकल चोटियों पर चुपके से कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन विजय और सफेद सागर जैसे बहुत ही दिलेर ऑपरेशंस भारतीय सेना ने किए। दुर्गम परिस्थितियों में 18,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर माइनस तापमान वाली ऊंची चोटियों पर यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जो जीत हमें हासिल हुई थी, उसकी याद में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार। जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में आइए आप सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पिसनहारी का कुआं। ये है इस कहानी का पहला भाग, स्वर अमरकांत दुबे का।
2: गोमती ने मृत्यु शैया पर पड़े हुए चौधरी विनायक सिंह से कहा, चौधरी, मेरे जीवन की यही लालसा थी। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, इसकी कुछ चिंता न करो काकी, तुम्हारी लालसा भगवान पूरी करेंगे। मैं आज ही से मजदूरों को बुलाकर काम पर लगा देता हूं। देव ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी पियोगे। तुमने तो गिना होगा कितने रुपए हैं। गोमती ने एक क्षण आंखें बंद करके बिखरी हुई स्मृति को एकत्र करके कहा, भैया, मैं क्या जानूं कितने रुपए हैं। जो कुछ है वो इसी हांडी में है। इतना करना कि इतने में ही काम चल जाए, किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। चौधरी ने बंद हांडी को उठाकर हाथों से तौलते हुए कहा, ऐसा तो करेंगे ही काकी, कौन देने वाला है। एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहीं, कुआं बनवाने को कौन देता है। धन्य हो तुम कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म

ताज के लिए दे रही हो। गोमती ने गर्व से कहा, भैया तुम तो तब बहुत छोटे थे, तुम्हारे काका मरे तो मरे, हाथ में कौड़ी भी न थी, दिन दिन भर भूखी पड़ी रहती, जो कुछ उनके पास था वो सब उनकी बीमारी में उठ गया। वो भगवान के बड़े भक्त थे, इसीलिए भगवान ने उन्हें अपने पास जल्दी बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो कि किस तरह दिन काट रही हूं। मैंने एक एक रात में मन मन भर अनाज पीसा है बेटा, मन मन भर। देखने वाले अचरज मानते थे, न जाने इतनी ताकत मुझ में कहां से आ जाती थी। बस यही लालसा रही कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआं गांव में बन जाए। नाम तो चलना चाहिए ना, इसीलिए तो आदमी बेटे बेटी को रोता है। इस तरह चौधरी विनायक सिंह को वसीयत करके उसी रात को बुढ़िया गोमती परलोक से धार गई। मरते समय अंतिम शब्द जो उसके मुख से निकले वो यही थे, कुआं बनवाने में देर न करना। उसके पास धन है ये तो लोगों को अनुमान था, लेकिन 2000 है इसका किसी को अनुमान न था। बुढ़िया अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी। चौधरी गांव का मुखिया और नियत का साफ आदमी था, इसलिए बुढ़िया ने उससे ये अंतिम आदेश किया था। चौधरी ने गोमती के क्रियाकर्म में बहुत रुपए खर्च न किए। जो ही इन संस्कारों से छुट्टी मिली, वो अपने बेटे हरनाथ सिंह को बुलाकर ईंट चूना पत्थर का तखमीना करने लगे। हरनाथ अनाज का व्यापार करता था। कुछ देर तक तो बैठा सुनता रहा, फिर बोला, अभी 2-4 महीने कुआं न बने तो कोई बड़ा हरज है? चौधरी ने करके कहा, हरज तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम ही क्या है, रुपए तो उसने दे ही दिए, हमें तो सैंत में यश मिलेगा। गोमती ने मरते मरते जल्द कुआं बनवाने को कहा था। हरनाथ बोला, हाँ कहा तो था, लेकिन आजकल बाजार अच्छा है, 2-3 हजार का अनाज भर लिया जाए तो अगहन पूस तक सवाया हो जाएगा, मैं आपको कुछ सूद दे दूंगा। चौधरी का मन शंका और भय के दुविधा में पड़ गया। 2000 के कहीं 2500 हो गए तो क्या कहना, जगमोहन में कुछ बेल बूटे बनवा दूंगा, लेकिन भय था कि कहीं घाटा हो गया तो। इस शंका को वो छिपा न सके और बोले, और जो कहीं घाटा हो गया तो? हरनाथ ने तड़प कर कहा, घाटा क्या हो जाएगा, कोई बात है, मान लो घाटा हो गया तो? हरनाथ ने उत्तेजित होकर कहा, ये कहो कि तुम रुपए नहीं देना चाहते, बड़े धर्मात्मा बने हुए हो। अन्य वृद्ध जनों की भांति चौधरी भी अपने बेटे से दबते थे। कातर स्वर में बोले, मैं ये कब कहता हूं कि रुपए न दूंगा, लेकिन पराया धन है, सोच समझकर ही तो उसमें हाथ लगाना चाहिए ना, बनेज व्यापार का हाल कौन जानता है, कहीं भाव और गिर जाए तो, अनाज में घुन ही लग जाए, कोई मुद्दई घर में आग ही लगा दे, अरे सब बातें सोच लो अच्छी तरह। हरनाथ ने व्यंग्य से कहा, इस तरह सोचना है तो ये क्यों नहीं सोचते कि कोई चोर ही उठा ले जाए या बनी बनाई दीवार बैठ जाए, अरे ये बातें तो होती ही हैं। चौधरी के पास अब और कोई दलील न थी। कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोंकी, अखाड़े में उतर पड़ा, पर तलवार की चमक देखते ही हाथ पांव फूल गए। बगलें झांक कर चौधरी ने कहा, तो कितना लोगे? हरनाथ कुशल योद्धा की भांति शत्रु को पीछे हटता देख कर बफर कर बोला, सबका सब दे दीजिए, 150 रुपए लेकर क्या खिलवाड़ करना है। चौधरी राजी हो गए। गोमती को उन्हें रुपए देते किसी ने न देखा था, लोक निंदा की संभावना ही न थी। हरनाथ ने अनाज भरा, अनाजों के बोरों का ढेर लग गया। आराम की मीठी नींद सोने वाले चौधरी अब सारी रात बोरों की रखवाली करते थे, मजाल न थी कि कोई चूहिया बोरों में घुस जाए। चौधरी इस तरह झपटते थे कि बिल्ली बिहार मान लेती। इस तरह 6 महीने बीत गए। पौष में अनाज बिका, पूरे 500 रुपए का लाभ हुआ। हरनाथ ने कहा, इसमें से 50 रुपए आप ले लें। चौधरी ने झल्ला कर कहा, 50 रुपए? अरे क्या खैरात ले लूं? किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 200 रुपए सूद के होते, तो मुझे 2-4 रुपए कम दे दो वो चलेगा। हरनाथ ने ज्यादा बदबड़ाव न किया, 150 रुपए चौधरी को दे दिए। चौधरी की आत्मा

इतनी प्रसन्न कभी ना हुई थी। रात को वो अपनी कोठरी में सोने गया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढ़िया गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। वो नींद में न था, कोई नशा न खाया था। गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, उस मुरझाए हुए मुख पर एक विचित्र स्फूर्ति थी। कई साल बीत गए। चौधरी बराबर इसी फिक्र में रहते कि हरनाथ से रुपए निकाल लूं, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हीले हवाले करता रहता था। वो साल में थोड़ा सा ब्याज दे देता था, पर मूल के लिए हजार बातें बनाता था। कभी लेने का रोना था, कभी चुकते का। हाँ, कारोबार बढ़ता जाता था। आखिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या डूबे मुझे परवाह नहीं है, इस महीने में तुम्हें अवश्य ही रुपए चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बड़ी उड़नघाइयां बताई, पर चौधरी अपने इरादे पर जमे रहे। हरनाथ ने झुंझलाकर कहा, कहता तो हूं कि दो महीने और ठहरिए, माल बिकते ही मैं रुपए दे दूंगा। चौधरी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा माल कभी ना बिकेगा और न तुम्हारे दो महीने कभी पूरे होंगे। मैं आज रुपए लेकर ही रहूंगा। हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भरा वहां से उठ खड़ा हुआ और 2000 रुपए लाकर चौधरी के सामने जोर से पटक दिए। चौधरी ने कुछ झेंप कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे और क्या बातों से रोजगार होता है। हरनाथ ने कहा, तो मुझे इस समय 150 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने में दे देना। अब सब आज ही तो खर्च ना हो जाएंगे। हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा, आप चाहे खर्च कीजिए चाहे जमा कीजिए, मुझे रुपयों का काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गए हैं जो आपकी धौंस सुनूं। चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताक पर रख दिए। कुएं की दाग बेल डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिए थे, पर मन में कुछ और मंसूबा बांध रखा था। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया तो हरनाथ चौधरी की कोठरी की चूल खिसकाकर अंदर घुसा। चौधरी बेखबर सोए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां उठाकर बाहर निकल जाऊं, लेकिन जो ही हाथ बढ़ाया उसे अपने सामने गोमती खड़ी दिखाई दी। वो दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया। फिर ये सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो, उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अब की वो मूर्ति इतनी भयंकर हो गई कि हरनाथ एक क्षण भी वहां खड़ा न रह सका। वो भागा पर बरामदे में ही अचेत होकर गिर पड़ा। हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो वही रुपए लाकर पटक दिया। दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा लाऊंगा, झूठ मूठ चोर का गुल मचा दूंगा तो मेरी ओर संदेह भी ना होगा। पर जब ये पेशबंदी ठीक ना उतरी तो उस पर व्यापारियों के तकादे होने लगे। वादों पर लोगों को कहां तक टालता, जितने बहाने हो सकते थे सब किए। आखिर वो नौबत आ गई कि लोग नालिश करने की धमकियां देने लगे। एक ने तो 300 रुपए की नालिश कर भी दी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे थे। दुकान पर हरनाथ बैठता था, चौधरी को उससे कोई वास्ता न था, पर उसकी जो साख थी वो चौधरी के कारण। लोग चौधरी को खरा और लेन देन का साफ आदमी समझते थे। अब भी यद्यपि कोई उनसे तकाजा न करता था, पर वो सबसे मुंह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि कुएं के रुपए न छूऊंगा चाहे कुछ आ पड़े। रात को एक व्यापारी के चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर हजारों गालियां सुनाई। चौधरी को बार बार क्रोध आता था कि चलकर मूछें उखाड़ लूं, पर मन को समझाया, हमसे मतलब ही क्या है, बेटे का कर्ज चुकाना बाप का धर्म नहीं है। जब भोजन करने गए तो पत्नी ने कहा, ये सब क्या उपद्रव मचा रखा है। चौधरी ने कठोर स्वर में कहा, मैंने मचा रखा है? अरे और किसने मचा रखा है, बच्चा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ा सा माल है, रुपए तो सब तुमने मांग लिए। पत्नी ने कहा, चौधरी मांग न लेता तो क्या करता, हलवाई की दुकान पर दादा का फातिहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। पत्नी ने कहा, ये नाक कटाई अच्छी लगती है क्या। चौधरी

0: नहीं, ऐसा गजब ना करना। मैं इतना बड़ा विश्वासघात ना करूंगा, चाहे घर मिट्टी में ही मिल जाए, चौधरी बोला। लेकिन पत्नी ने इन बातों की ओर ध्यान न दिया। वो लपक कर भीतर गई और थैलियों पर हाथ डालना ही चाहती थी कि एक चीख मार कर हट गई। उसकी सारी देह सितार के तार की भांति कांपने लगी। चौधरी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया? पत्नी ने ताक की ओर भयातुर नेत्रों से देखकर कहा, चुड़ैल, चुड़ैल वहां खड़ी है।
1: पिसनहारी का कुआं, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी का पहला भाग। वाचन स्वर अमरकांत दुबे का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
2: सुनो कहानी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रंग दे बसंती से, आवाज़ मोहित चौहान की थी, गीत के बोल प्रसून जोशी के और संगीत ए आर रहमान का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज़ विशाल मिश्रा की थी, गीत के बोल नीलेश मिश्रा के और संगीत प्रीतम का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरे

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आया है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत, प्रायोजक वीकू वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
4: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीकू वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

کچھ ریشمی خواب، کچھ مکھملی انداز

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से। आवाज़ें जावेद अली और मधुवंती बख्शी की थी। गीत के बोल रकीब आलम और सिजू थुराबूर के, संगीत देवी श्री प्रसाद का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म एक विलेन रिटर्न से। आवाज़ अंकित तिवारी की थी। गीत की रचना की थी मनोज मुंतशिर ने और संगीत अंकित तिवारी का।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और

0: और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
4: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को

0: अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र

0: प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म आर्टिकल 15 से। आवाज़ अरमान मलिक की थी। गीत के बोल शकील आज़मी के और संगीत अनुराग सेकिया का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मन मर्जियाँ से। आवाज़ें एमी बिर्क और शाहिद माल्या की थी। गीत के बोल शेल के और संगीत अमित त्रिवेदी का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म संजू से, आवाज़ सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल शेखर अस्तित्व के और संगीत विक्रम मोन्ट्रोज़ का।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

0: तुझको।
1: हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जी एस कोहली और दूसरे थे ओ पी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जी एस कोहली और ओ पी नैयर का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जी एस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जी एस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जी एस कोहली और ओ पी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
2: कुछ समझ नहीं

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जी एस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

सन 1963 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूख कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है।

ये खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अनजान का लिखा हुआ है।

साठ के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे, कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए गाने सुनकर।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जीएस कोहली पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: प्यार की शुरुआत अक्सर एक साधारण सी मुलाकात से होती है, एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी बात, और फिर धीरे धीरे दिल उस शख्स के आसपास अपनी दुनिया बसाने लगता है। कभी किसी बारिश भरी शाम में, कभी किसी सुनहरे सवेरे में, तो कभी भीड़ के बीच अचानक हुई मुलाकात में। प्यार चुपके से दिल का दरवाजा खटखटा देता है, और जब ये एहसास दस्तक देता है तो साधारण दिन भी खूबसूरत लगने लगता है। वो पहली मुलाकात का पल अपने साथ एक अलग ही एहसास लाता है। वो मुलाकात कुछ खास थी जब पहली बार मिले थे हम। क्या था उस लम्हे में कि धड़कनों ने तेज रफ्तार में आकर कह दिया कि दिल ढूंढ रहा था जिस खास को, वो तुम हो, बस तुम। याद है तुम्हें वो चांद की ठंडी चमकती चांदनी रातें, जब बेहिसाब प्यार लुटाते थे हम एक दूसरे पर। तुम्हारा यूं एकटक देखना और कह उठना कि तुम एक परी सी दिखती हो, इस सारे जहां में बस तुम ही तुम दिखती हो, जिसे सारे दुख सुख कह सकूं, तुम वो एक हमसफर सी दिखती हो।

प्यार कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो तो चुपके से बिन कुछ कहे दिल के किसी कोने में उतर जाता है। पहले एक एहसास बनकर, फिर एक आदत बनकर, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बनकर। पता ही नहीं चलता कि कब किसी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, कब उसकी मुस्कान दिन की सबसे खूबसूरत वजह बन जाती है, और कब उसकी मौजूदगी से हर मौसम सुहाना लगने लगता है, जैसे लंबे अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण। उसकी मौजूदगी से मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कविता की तरह लगता है, जिसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं। जब कोई दिल के करीब होता है तो उसकी खुशियां और दुख अपने लगने लगते हैं, और उसके साथ भविष्य के सपने सजने लगते हैं।

प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। किसी के इंतजार में वक्त का ठहर जाना, किसी की आवाज सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाना और बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेना, यही तो है प्यार की सबसे खूबसूरत भाषा। ये वो एहसास है जिसमें दो दिल अलग होते हुए भी एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और खामोशियां भी कह उठती हैं कि मेरे दिल की हर धड़कन का नाम तुम हो, क्योंकि अब हर धड़कन में तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है। मेरे हर ख्वाब का मुकाम तुम हो, क्योंकि भविष्य की हर कल्पना में तुम्हारा साथ शामिल है और मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये कहानी अधूरी है।

0: अब समय है अंतराल का, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत, कोई ऐसा जिसके साथ जीवन जीने का अर्थ समझ आने लगता है, जिसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कहानी की तरह लगता है, जिसमें भावनाएं हैं, सपने हैं, इंतजार है और प्यार की वो गहराई है जिसे शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। कभी कभी ये डर भी लगता है कि कहीं ये सपना टूट ना जाए, क्योंकि जो चीज दिल के सबसे करीब होती है उसके खोने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन फिर उसकी एक मुस्कान, उसका एक विश्वास भरा शब्द सारे डर मिटा देता है और दिल फिर से उम्मीदों के आसमान में बेपरवाह सा उड़ने लगता है। और जब जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि जैसे जिंदगी की हर राह, हर मोड़, हर संघर्ष सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए था, जैसे सारी दूरियां, सारे इंतजार और सारी अधूरी दुआएं बस एक उसके मिलने पर आकर पूरी हो गईं।

तुम्हारे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने अचानक मुझे अपना लिया हो, जैसे बरसों से बंद पड़ी किसी खिड़की से धूप दबे पांव भीतर चली आई हो। उस पल एहसास हुआ कि कभी कभी एक व्यक्ति का मिल जाना पूरी दुनिया के मिल जाने जैसा होता है। तुम्हारे आने से पहले लोग तो बहुत थे लेकिन कोई अपना नहीं था। सपने तो बहुत थे लेकिन उन्हें साझा करने वाला कोई नहीं था। फिर तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा और हर अधूरा एहसास पूरा होने लगा। अब खुशियां आने की वजह नहीं ढूंढती। तुम्हारी एक मुस्कान दिल को रोशनी से सराबोर कर देती है। तुम्हारी एक आवाज मन के सारे शोर को शांत कर देती है। तुम्हारा साथ ऐसा लगता है जैसे किसी लंबे सफर के बाद मुसाफिर को अपनी मंजिल मिल गई हो।

तुम्हारे साथ बिताया गया कोई भी पल साधारण नहीं होता। तुम्हारी बातों में एक ऐसा जादू है जो थके हुए मन को सुकून देता है, जो बिखरे हुए ख्वाबों को फिर से सजाने का हौसला देता है। कभी कभी तो मन सोचता है कि आखिर प्यार इतना सुंदर क्यों होता है। शायद इसलिए कि वो हमें ये एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारी खामोशियों को समझता है, कोई है जो हमारी मुस्कानों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को पढ़ लेता है और हमारे हर सुख दुख को हमारे साथ बांट लेता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो मेरा बस यही जवाब होगा, तुम केवल मेरी कहानी का हिस्सा नहीं हो, तुम ही तो मेरी कहानी की खूबसूरती हो, तुम केवल मेरा सपना नहीं हो, तुम तो मेरे सपनों की ताबीर हो। तुम्हारे मिलने के बाद मुझे किसी और चीज की चाह नहीं रही, क्योंकि प्रेम का सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि किसी अपने को पा लेने में होता है।

0: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सेवा के कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
3: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
2: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
4: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
2: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: .3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की विविध भारती सेवा के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजकर ठीक 5 मिनट हुए हैं, अब आज का प्रसारण समाप्त करते हैं। आपसे अगली भेंट कल सुबह 5:53 पर होगी। शुभ रात्रि, जय हिंद।